0: Joyce FM 90.4 MHz.
1: अरिश्वा, आज तू इस पे साइन करेगी।
2: ये क्या है?
1: एक्चुअली ये एक एग्रीमेंट है कि स्कूल खत्म होने के बाद तू और मैं शादी करेंगे।
2: कुछ भी।
1: सी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज यार इस पे साइन कर देना।
2: कुछ ये ले कर दिया। हैप्पी।

0: मुझे बंस।
1: एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था, तो मैं हर कलर का एक फ्रेंडशिप बैंड ले आया।
0: लाओ दो, ये लो।
2: मैं

0: Are you the Chinese?
1: You killed me.
2: What happened?
1: Why would you like your wife?
0: I'm killing you. Exactly, Danny. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.